0: メロディーメン。
1: Bollywood music ke wahaka dakkalaeru music director unge wahaka dakkanula nimma lakennu ane hulong ke film to ga music supervisor unga da kura daura bure Bollywood ke music director ege zimma mafula sabake film ge muli musical identity button kuruma raagu tang heduma music arrangement ta tayyar kuruma limverina lavakiun terina ku masike kurum ge turun film ge wahake ya vyafari ke strategy ya ए म्यूजिक कुलवाय दिनों का विस मैकन तोरे अदा करनी म्यूजिक डायरेक्टर कम कवाती। जमाने बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर उनके एम में कामयाबे मिसाल की प्रीतम चक्रबती। एना के कामयाबी के असल की अडवा हालों में वागुतुंग हितुगा बिंबलों ने के फदा मोलो रागुतंग उफेदुमा लिबिफवा ए कैवनी पार्टी ता फलो फिलवाल दे फोरी का दिन शुन्त होगे लवे कम गवियस नो ता हितु के फुंग इहुसास ता बन्नुं कोला लोबी के लवे कम गवियस साउंड अधि म्यूजिक प्रोडक्शन के दायरें एना होदा फवा ता उलीमा तजरिबा के सबुं जमानी स्ट्रीमी मिंगनु ता कफेते अधि हम एयाकु सागाफी मोलो रागु ता होगे असरु एकुलेवे लवतं उफद्दुमुगे कुलदानकं एना लिबिफवे प्रीतम के कामयाबी बिनाए फवनी डायरेक्टर उन्ना लवकियों तेरे नायकु एना कुरा मुहिम मासिक के तहोगे मच्छा वाकी राग कं इम्मे कशे नाडु देने का तुमकी एना के इम्मे बोडो इंगुनरु के यायकु एना उफे दे लवता है की आमुंगे बोडो लोए पिल्ली बुन लवता के आदि अर्जित सिंह नायकु कुरी मासिक के तकी जमानी बॉलीवुड लोबी के लवतोगे मिस्राबु मुलिम बदल खोले मासिक के तके अयान मुखर्जी के ये जवानी है दीवानी के हिमना फवा बत्तमीज दिल की प्रीतम के हुनर के मिसाले प्रीतम म्यूजिक हदा अमिताभ बच्चरिया लेंदिए अदि बेनी दयाल अदि शेफाली अलवारिस की आफवा मिलावें जुवांग मुर के मेवां हालबोल मिजाज फुरिहा में सिफको दीफवे प्रीतम मिलवा बिना कुरी जमाने फोरिगद बीट तका ब्रास अदि होन के अड़तं एकुले वेगोता मेगे सबो मुले लवे दिरुमा उफावेरी कंगेनेस्तिंग अदि बेनी दयाल गे अडुगे सबुं लवा अडवहा लैर एवस मजबूर कमेन्नेति फोरिगद इहुसासे गिनेस्ते बत्तमीज दिल के कामयाबी आय को बॉलीवुड के फोरी का द डांस लवतकं एम में एक शेने इंग अड़की बेनी डायल कं कशवर वेकें दिया अधि एना के लवकी उम्ग हुरी मिनिवं कमकी मी लवया दिरूंगे नस्ती मैकंडु इस सबबु मी बाइन लकुआमी पोप क्लब म्यूजिक अधि जेज इंस्ट्रूमेंट तो गे नुफूज होदा एं बॉलीवुड के असलु गेल्लुवा नुला मुलिं आ उफेदुमे नेरी देविदाने कं दक्वादिं फुरी हमा मिसाले

0: और मैंने दिन ले पिफवा मैसेज की पीएसएम एआई डीएफएम नो दी है के मैं पेज फोनवा फवा मैसेज
1: आहरेंगे कोडेरु के हंदान तक एमुरी पलालायरु बप्पा की आहरेंगे दिरीउलमु के एममे बडु नमूना फिरहेन दरिया कवीती बप्पा के फियावळ मतिन हिंगा बप्पा फद फिरहेने कवमकी आहरें देखेमुंगा एममे बडु हुफें एकमक उमरुन दोसमुंग आवरका नोबा एकवरेंगे तेरे पदवी मस्तुआ तक तीगे वबागा आहरें चेहुनु एआय को आहरें में देमीहुंगे देमेदुगावा गायकमा नेंगे हुरस्तकें एलिमफेशि ए दोसवर बप्पा दिन हेवना सेहेतका ए वबाइन आहरें सलामे कुरन देखकी वाहकदका आहरें ना मा बडु सामालका मेनु देवुनु मस्तुगे अमलुका बाप्पा गाडुनाहा ए नसेहता की बेकार वाकता के कमन निम्मुन फिरहेन दरियाका बाप्पा के देमेदुक ओन्नंचे हे अलालुमा उफावेरी गुळमुक पतलुक देमियुंगे देमेदुक उफेदुनी बडु हिमेन कमे एता गोंजेउन ताका फहु मियदु आहरेन वणी एनु रक्का तिरि बाबाइन मुळिन सलामेवे नगळु मगन एबुरी आदवेफा मस्तुगे तेरेगा होरे बाप्पा गाडुने हुनु कमुगे हितामया बाप्पा के हेतुगे चेसुनु कमुगे हितामा आहरेन हेतुक आपुतु सोय मियादो आहरें रंगलु भी नमावेस बाप्पा के कुरिमती गहुरे बाप्पाए एरो आहरें न कंत कुरवनु कोई मुलिंगो है मिहें बुने माफंग एदेन हिफ्वरें आदिवेस आहरें न कन्नु लिबे आहरें हमेकनी बेनुं भी मि हागीगें हितु का फोरुवागें उलुमक बदलुगा कोम्मे विस ताने कमी आहरें गे हितु के तेदुवेर इहुसास्कं बायां कोल्ला
0: कुरेबुनु खुशीगे हगीगे गबूल कों एकमुन सलामे वेगें एम्बुरी औमकी इंसानकु तिरिउलु मेकनकाने एम्मे बोडु आदि एम्मे हिफरु गद फियवळु एकमकु बायफारन एम्मे लोबिवा मीहुं गे हितुग जेसुनु कम गे हुसासकी एमिहेगे कुरिमतीगा माफंग इदेशे पुनं दुलं अन्न एम्मे उंदगु बाहवस वेदाने मी बप्पेगे हेउ नसेहता तारियकु एम्बुरियास मियतु एनेकी हितुगवा तेदुवेरी हितामेया माफंग इदुमगे हिमें अडु दोलों बोना नुकेरुनस मिफदे युसास्ता बेर कोल्लं हिमें युतिराफ मी अबदस्तिबे फुन्नंगोंना रक्का तिरिचा आगे।

ब्रॉक आदि क्लासिक दौर कम कमी बलनी सोलस्ते के आ सतारस्ते के फंसा हा देमित गया हर तक मी वर जसुबाती उंदकु आदि जीने तेरी रागु तकें एकुले वे दौरे मी ओपेरा उफम वे दौरु

ओपेरा मी सोलस्तेकेगे हरतौगा इटली गौफम म्यूजिक के बावते मशहूर ओपेरा कंपोजरुंगे तेरेगा क्लोडियो मोंटेवाडी मोत्सर्ट जोसेप्पे वर्डी आदि जाकोमो फद फन्नानुं फाहक कोलेवे